मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी रीवा है। आज गुरुवार है, सख संबत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि तदनुसार 28 मई सन 2026। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में

सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। इस समय आपने आकाशवाणी रीवा ट्यून किया है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुप्रभातम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मातृवंदना से। समूह स्वरों में सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा का ये देशभक्तिपूर्ण गीत।

0: से तुम्हारिया दी दर्शन मोहे आज
1: सवरिया। शर्मिला भट्ट बयाल का गाया आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद का भजन। आइए सुनते हैं अगला भजन आलोक गांगुली के स्वर में, रचना वीरेंद्र मिश्र की है।

आप सुन रहे थे आलोक गांगुली के स्वर में वीरेंद्र मिश्र की रचना। इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है फसलों की सुरक्षा।

किसान भाई फसल के पैदावार बढ़ावे के निता उन्नत बीज रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग मानो हर तरह से प्रयास करी थे, फेराओ हर बार उम्मीद इसके अनुसार उपज नहीं मिल पावे और एकर मुख्य कारण आए फसल में रोग और कीटन के प्रकोप। उनका रोके के लाने अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशक दवाइन के प्रयोग मनाई करत है, जो उन फसल और जमीन के साथों साथ मनाई और सब जीव जानवरन के लाने हानिकारक है। किसान भाई, यह सब समस्या से बचे के निता हम सबका फसल के सुरक्षा जैविक विधि से करे के चाहिए, जौने में कौनों मेर के हानिकारक तत्व नहीं हो और जमीनों बंजर नहीं हो पावे। किसान भाई, अगर जैविक विधि से बीजोपचार की जाए तो बीज अमृत के समान है। जैविक विधि से दवाई बनावे के निता हमका 5 किलोग्राम देसी गाय के गोबर, 5 लीटर देसी गाय के गौमूत्र और 200 ग्राम खेत के मेड़ केर माटी, 50 ग्राम चूना और 20 लीटर पानी के जरूरत पड़त ही। बनावे की विधि यह मेरी ऊपर बताए सब सामान का 20 लीटर पानी में मिलाए के माटी के मटका में 2 दिन तक रखे और एक घोल का दिन में 2 बार लकड़ी से चलावत रहे। ओखे बाद साफ सूती कपड़ा से छान के बोबाई के दिन बीजन के उपचार कराए तब फसल में सुरक्षा तो बनी रहती, साथ ही कौनों मेर के विषैला तत्व नहीं निकरे। किसान भाई, एकर उपयोग कैसन के करे चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। एकर उपयोग करे के निता एमा 100 किलोग्राम बीज के उपचार कई के ओखा छाया में सुखावे के चाहिए, ओखे बाद बोवाई करे के चाहिए। यह जैविक घोल बीजन का रोग रहित और उनके अंकुरण क्षमता का बढ़ावे में बहुत उपयोगी है। किसान भाई, फसल का कीट रोग के बचाव और नियंत्रण के लाने निमास्त्र जैविक पदार्थ के उपयोग कीन जात है। निमास्त्र केर रस चूसे वाले कीड़ा, छोटी सूढ़ी, इल्लियां, फल छेदक, तना छेदक कई रोगन के नियंत्रण के लाने और रोग आवे से पहले एकर छिड़काव करे के चाहिए। निमास्त्र का बनावे केर विधि यमेर है।

0: सबसे पहले प्लास्टिक के बर्तन में 5 किलोग्राम नीम के पत्ती का छोट छोट टुकड़ा काट के वहीं में 5 किलोग्राम नीम के फर पीस के डाल दे और 5 लीटर गौमूत्र और 1 किलोग्राम गाय के गोबर का डाल दे। ये पदार्थ का एक लकड़ी के डंडा से मिलावत रहे, जालीदार कपड़ा से ढक दे और एका 48 घंटा ऐसा रहा दे और 48 घंटा में 2 बार डंडा से चलावत रहे। किसान भाई, नीमास्त्र के भंडारण और सावधानी यह मेर है। नीमास्त्र के प्रयोग 6 महीना तक अपना पांच कह सकी थे। नीमास्त्र का माटी अथवा प्लास्टिक के बर्तन में भर के छाया में रखे के चाहिए, जौने ओमा घाम बिल्कुल न लागे पावे। नीमास्त्र के उपयोग करे के समय माटी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन के उपयोग करे के चाहिए, जौने अन्य रासायनिक क्रिया न हो पावे। किसान भाई, ऐसा फसलन में फफूंद से बचावे की नीता 100 लीटर पानी में 3 लीटर माठा खूब निकाह से मिला ले और मिलाए के फसल में छिड़काव करे तो फसल के फफूंद जैसे रोगन से बचावा जा सकत है। एक बात और है कि ए दवा का और अधिक प्रभावी बनावे के नीता एमा तांबा के टुकड़ा डाल दिन जाए और ओमा 2 दिन तक रहा दे। ओखे बाद माठा के उपयोग फफूंद नाशक दवा बनावे में करे तो अधिक प्रभावी हुई। किसान भाई, या मेर से अगर अपना पांच जैविक विधि से फसल सुरक्षा की विधि अपनाई तो खेती में लाभ मिलवे करी।
1: फसलों की सुरक्षा, इस विषय पर आप सुन रहे थे आज के कृषि संकेत के अंतर्गत जानकारी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय 6:40 हुए हैं। ये समय है श्री रामचरितमानस पाठ का। तो आइए सुनते हैं रामचरितमानस गायन।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर उत्तरा केलकर, उषा मंगेशकर और साथियों का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रीवा का प्रसारण। श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जान लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आज सवेरे प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:23 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

हमारे केंद्र से सुबह 10:40 पर ईद उल अज़हा के ख़ास मौके पर कार्यक्रम पेश किया जाएगा तिलवाते कलाम। पेशकश होगी मोहम्मद आदिल हुसैन की। हज और कुर्बानी का फ़लसफ़ा, ये वार्ता पेश करेंगे मोहम्मद नदीम। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:20 पर और सुबह 9:00।

शाम 7:21 पर समय होगा कार्यक्रम चौपाल का। आकर्षण होंगे बघेली कहानी गोपी के गैया। कहानीकार हैं सुरेश कुमार तिवारी। साथ ही सुनेंगे समसामयिक चर्चा और लोकगीत।

एक बार फिर याद दिला देते हैं, ईद उल अज़हा के ख़ास मौके पर कार्यक्रम पेश करेंगे तिलावत-ए कलाम। पेशकश होगी मोहम्मद आदिल हुसैन की। हज और कुर्बानी का फ़लसफ़ा, ये वार्ता पेश करेंगे मोहम्मद नदीम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी रीवा है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ़ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आबंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः।

0: कृतः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीयपटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्धप्रदाने सामान्य वित्तीयनियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां IPL क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF

0: को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards, and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision, taken at its first cabinet meeting on May the 11th, to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The two-day program is aimed at deliberating strategies for the forthcoming Kharif season with a focus on sustainable agriculture, enhanced productivity, climate resilience, infrastructure strengthening and farmer prosperity. Eid ul-Zuha, also known as the Festival of Sacrifice, is being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid ul-Zuha. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। ईशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक न रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने

0: कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्यूषा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ट्यूषा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्यूषा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलतास, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल एलिमिनेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी का ये गीत। आवाजें किशोर कुमार, अनवर और अजीज नाजा की थीं। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान

या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या

0: अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म का एक गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसके साथ ही संगीत प्रभा का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 7:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: बेहतर करने की संभावना छुपाए होता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं और नई उमंगों के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू ऑल। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। वी आर वेरी थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम विद अ ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म and well yes, we will first give you the latest national international news and then metro city updates follow, and then today we'll also explore historical information related to today. Today it's 28th of May 2026. Without any further delay, let's get started with the headlines. Vaishnavi
0: ji, bilkul। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities

0: Authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling.
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है।
0: Eid-ul-Zuha, also known as the Festival of Sacrifice, is being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid-ul-Zuha. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. She further urged the citizens to strengthen their resolve to promote love and harmony in the society.
1: शगुन विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है और हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: President Draupadi Murmu will confer the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police at the Paljor Stadium in Gangtok today. Sikkim will become the 15th state of the country and third from Northeast to receive this award. The President's Police Colour is the highest ceremonial honour awarded to a police force in the country in recognition of exceptional service, unwavering discipline and dedication to the nation.
1: युवा मामले विभाग और माय भारत आज से भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक दिवसीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। इसके साथ ही कल से दो दिवसीय चिंतन शिविर पूर्वोत्तर का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, प्रमाण आधारित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और समुदाय आधारित हस्तक्षेप मॉडलों को प्रस्तुत करना है।
0: Now let us talk about hypertension. Well, around 30 crore people in the country are living with hypertension, and with the prevalence rate of nearly 25% in rural areas, 33% in urban areas. Talking to Akashwani News, cardiologist at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Professor Ambuj Roy said that high blood pressure or hypertension, this is the leading cause of mortality in India. And this accounts for nearly 16 lakh deaths every year. Let's hear what he has to say.
3: Almost 16% of deaths in India are attributed to hypertension, which is almost 16 lakh people dying of hypertension every year. So we need to have the strategy of screen, treat and control so that we can put maximum number of people on blood pressure medicines. And these medicines are very cheap, widely available in the public health system. So we need to, only thing we need to do is implement it better so that most people can get benefit of this.
1: आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम

0: फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। लोकतांत्रिक मूल्यों, वैचारिक संवाद और जनभागीदारी को समर्पित दिल्ली विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना का आज दिल्ली विधानसभा सदन में लोकार्पण किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली विधानसभा ने बताया कि ये पत्रिका विधानसभा की गतिविधियों, महत्वपूर्ण चर्चाओं, विधायक विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। वहीं मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा। इस बीच दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नाउ वैष्णवी, लेट्स हेड टू चेन्नई। सो द मद्रास हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स इन तमिलनाडु ड्यूरिंग बकरीद एंड ऑन ऑल द अदर डेज। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस जी एस स्वामीनाथन एंड जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन इशूड द बैन ऑर्डर। द कोर्ट सेड एनिमल सैक्रिफाइस कैन ओनली टेक प्लेस इन डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउसेस under the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act 1998. So the judges directed the state government and police officials to strictly enforce the order and prevent any violations. The case has been posted for compliance tomorrow. Now where are we heading now, Vaishnavi?
0: मुंबई की ओर रुख करते हैं। और मुंबई में इस समय बड़े स्तर पर सड़कों को कंक्रीट से मजबूत बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बृहन मुंबई नगर निगम ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले वर्ष तक ये सभी परियोजनाएं पूरी होने के बाद शहर में गड्ढों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नगर निगम आयुक्त तो अश्विनी भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले सभी सड़क निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं और 1 जून के बाद कोई भी परियोजना अधूरी न रहे।
3: Well, now focusing on Bengaluru, Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh said artificial intelligence and digital technologies, they will play a major role in solving future challenges. These include climate change, urbanization, groundwater depletion, infrastructure stress as well. So she was speaking at the National AI and Digital Water Summit in Bengaluru, and she said Karnataka should become a national leader in AI-based urban water management. She also highlighted the importance of real-time monitoring there, predictive analytics and data-driven governance for better public services. She said Karnataka has already set up an AI center for excellence and introduced policies supporting digital governance systems. So this was the update from Bengaluru.
0: और बेंगलुरु से चलते हैं कलकत्ता की ओर। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 8 जून को केंद्र सरकार के साथ समझौता किया जाएगा। साथ ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं।
3: नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद। Telangana Chief Minister Revanth Reddy has written to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis seeking discussions on the Tumidihatti barrage project. This is important for supplying water to North Telangana. So the Dr. B.R. Ambedkar Pranahita Chevalle Sujala Sravanti project is expected to provide water to the districts of Nizamabad, Karim Nagar and Medak. In 2016, actually, Maharashtra had agreed to build the barrage at a height of 148 meters. However, Telangana recently reviewed the plan after irrigation experts said that the current height may not be enough to meet the region's water needs. The Chief Minister has requested fresh talks with Maharashtra to slightly increase the barrage height there. He said this would allow water to flow to Telangana through gravity, making the project more efficient and reducing costs. So these were the updates from our metro cities.
0: और अब बात आज के मौसम की। राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आज बारिश के साथ तूफान आने की संभावना है। और बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
3: Chennai is expected to have partly cloudy sky. Minimum temperature was around 28 degree Celsius and maximum will be around 39 degrees.
0: वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
3: Bengaluru is expected to have partly cloudy sky again with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was around 21 degree Celsius. Maximum will be around 30 degree Celsius.
0: वहीं कोलकाता में तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाली बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
3: इफ वी टॉक अबाउट हैदराबाद, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स हियर एज वेल। द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस इन हैदराबाद।
0: जी बिल्कुल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं अब समय है इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों को पलटने का जिन्होंने अपने दौर में दुनिया की राजनीति न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा दी। शगुन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इतिहास के जगत में इतिहास पर जाएं, इससे पहले हम बात करेंगे कि आज के दिन की विशेषता के बारे में आज क्या खास है।
3: वेल टुडे इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। Well, today is 28th of May, and this was actually, diving into the history of this day, this was established in 1987, and it mobilizes activists, also health organizations, to demand equal access to comprehensive health care, and as well as bodily autonomy for all the women. So this day, it serves as a global reminder to prioritize so many things, women's physical, reproductive, mental well-being, while also driving concrete policy changes rather than just spreading awareness. Action is important.
0: और अगर हम महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन और हेल्थ सेंटर्स के जरिए देश भर में लाखों महिलाओं के ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त और समय पर स्क्रीनिंग की जा रही है।
3: Exactly, massive health screenings, we should say, the cervical cancer and free screening for breast and These women, they range from rural and urban sectors. Also, there is this nationwide HPV campaign. In February 2026, India took a massive preventive leap by rolling out a major nationwide HPV vaccination drive. And this targeted over 1 crore girls to radically bring down cervical cancer numbers. How great is that?
0: जी बिल्कुल। और संस्थागत प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के चलते भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है।
3: Well, there is also focus on nutritional safety along with that. Well, this actually includes expanding structural support via digitized Anganwadi ecosystems, and this has drastically scaled up iron and nutritional distribution to combat chronic anemia in adolescent girls and pregnant mothers as well. We were telling you about the International Day of Action for Women's Health, which is being observed today. Now, we'll take you back in time. In the year 1892, renowned British naturalist

0: John Muir, alongside a group of conservationists, established the Sierra Club in San Francisco, laying the foundation for the modern environmental conservation movement.
1: वहीं 1936 में आज ही के दिन प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने अपना ऐतिहासिक शोध पत्र ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स प्रस्तुत किया, जिसने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की सैद्धांतिक नींव रखी थी।
0: In 1937, the German automobile manufacturer Volkswagen was officially founded in Berlin, and this was originally tasked with creating an affordable car for the general public, or in other words, the people's car.
1: 1952 में ग्रीस में महिलाओं को कानूनी रूप से मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का समान अधिकार प्रदान किया गया, जो यूरोपीय महिला अधिकार आंदोलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव था।
0: In 1961, British lawyer Peter Benenson published the article The Forgotten Prisoners in several newspapers. This marked the official founding of the influential human rights organization Amnesty International.
1: वहीं 1999 में आज ही के दिन इटली के मिलान शहर में पूरे 22 वर्षों के जटिल जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य के बाद लियोनार्डो दा विंची का कालजी उत्कृष्ट कृति द लास्ट सपर को फिर से आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया गया था।
0: In 2003, the world's first ever successfully cloned horse, a halflinger filly, which was named Prometea. This was born in Italy.
1: और श्रोताओं, इतिहास के इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बाद अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिन्होंने अपने कार्य, विचार और उपलब्धियों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ी और जिनकी जयंती या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है। तो पुण्यतिथि में सबसे पहला नाम है विजय सिंह पथिक का। राजस्थान की धरती पर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी सेनानियों में विजय सिंह पथिक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली पत्रकार और समाज सुधारक भी थे। बिजौलिया किसान आंदोलन को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने किसानों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रेरणा दी। उन्होंने अंग्रेजी शासन और रियायतों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और अपने लेखन व भाषणों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को मजबूत किया।
0: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेंबरिंग भगवती चरण बोरा। वेल, ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, आल्सो a key member of the Hindustan Socialist Republican Association, so a close associate of Bhagat Singh. He co-authored The Philosophy of the Bomb, Justifying Revolutionary Violence. Well, his legacy remains a symbol of fearless commitment to India's independence.
1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने अपने विचारों, लेखनी और क्रांतिकारी सोच से युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई, वे नाम है वीर सावरकर। 1883 में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि, लेखक और ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और देश की आजादी के लिए कई कठिन यातनाएं झेली। उन्हें अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल यानी काला पानी में भी लंबे समय तक कैद रखा गया। वीर सावरकर ने इतिहास, राष्ट्रवाद और समाज सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनकी चर्चित रचनाओं में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदुत्व और माझी जनठेब विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने विचारों और लेखन के कारण वे भारतीय इतिहास और राजनीति में आज भी एक चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं।
0: Listeners, today we are also remembering K. Sachidanand, arguably the most influential poet writing in Malayalam today, and well, reflects on his creative journey from his formative years in Thrissur to become a literary icon with over 50 volumes of poetry and essays. So his poetic evolution, informed by Kerala's cultural roots and shaped by global traditions, it actually continues to inspire generations. A multilingual scholar, translator and essayist, Sachidanand speaks about the identity of Malayalam, the spiritual depth of bhakti poetry and the transformative power of language. His engagement with Indian and world literatures has made him one of the most translated Indian poets. I was telling you about K. Sachidanand.
1: आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले महान निर्माता निर्देशक में महबूब खान की। महबूब खान ने भारतीय फिल्मों को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें समाज और भावनाओं से जोड़ने का काम किया। उनकी फिल्म मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। वे बड़े कैनवास पर मानवीय संघर्ष और भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जाने जाते थे। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें आज भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। और अब आइए आपको सुनाते हैं महबूब खान की फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत।

0: Well, Walker's fluid phrasing, warm tone and showmanship, it actually directly influenced legends like, we know, B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix as well, cementing his role as one of the architects of modern blues and rock.
1: हास्य और व्यंग्य को बेहद सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी रचनाओं में हास्य के साथ साथ समाज की गहरी सच्चाइयां भी देखने को मिलती थी। वे मंच संचालन और कवि सम्मेलन की दुनिया में भी बेहद लोकप्रिय रहे। साहित्य और हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: Today, it's also another musician's birthday. So, John Cameron Fogerty, actually. Together with Dirk Clifford, his brother Tom Fogerty founded the Swamp Rock Band, which is Creedence Clearwater Revival, for which he was the lead singer, lead guitarist, and created so many great songs, one of which you're actually listening in the background. This is Green River.

0: पुलस्कर। 1921 में जन्मे डीवी पुलस्कर बहुत कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। वे प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के पुत्र थे और उन्होंने अपने गायन में भक्ति, शास्त्रीयता और भावनाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जिसने शास्त्रीय संगीत को आम श्रोताओं के बीच भी लोकप्रिय बनाया। भले ही उनका जीवन बहुत छोटा रहा, लेकिन भारतीय संगीत पर उनकी छाप आज भी गहराई से महसूस की जाती है।
1: ग्रेट इम्पैक्ट
0: जी, बिल्कुल। और श्रोताओं को अब सुनाते हैं डीवी पलुस्कर की उनकी मधुर आवाज में एक मनमोहक भजन।

0: wow, this is such a beautiful creation, right? Overall compositions, so beautiful.
1: जी बिल्कुल. और श्रोताओं, इसी खूबसूरत भजन के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही. अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
0: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी ऑल्सो होप दैट यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.
1: नमस्कार.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी

0: मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
1: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है।

0: दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: The Cabinet Committee

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी की दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे।

मुक्ति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था।

सेल्युलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में यह क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण में मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर

इसके बृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए यह संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दासता की बोलियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सिंह जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने

कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोहित्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तोड़वाने के लिए घरों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोहित्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगे मान ली गई। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे आरडी बर्मन के संगीत से साजा अब्दुल्ला फिल्म का गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म थी धर्मपुत्र।

आइए सुनते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। गीतकार हैं शैलेंद्र और धुन तैयार किया है शंकर जय किशन ने।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। कार्यालय अधीक्षक शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के शिक्षा प्रशिक्षण हेतु नया सत्र 15 जून 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। रीवा संभाग के इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर 10 जून 2026 तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 से 12 वर्ष के बीच होना आवश्यक है तथा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चयन साक्षात्कार 14 जून 2026 दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। संस्था में आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन और खेलकूद की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 89932519 0039416654 9179212330 और 9981222900 पर संपर्क किया जा सकता है। पता है कार्यालय अधीक्षक शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह उपमन नगर बोदाबाग रीवा। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी शमा परवाना। आशा भोसले और सखियों ने इसे गाया। संगीतकार थे हुसनलाल भगतराम और शब्द रचना मजरो सुल्तानपुरी की थी।

तीसरी कसम फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, ये है अगला गीत।

जिस देश में गंगा बहती है। अभी आप सुन रहे थे मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में शैलेंद्र की शब्द रचना। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आइए एक बार फिर सुनते हैं मुकेश की आवाज़। आइए आपको सुनवाते हैं सफर फिल्म का एक गीत जिसे मन्ना डे और साथियों ने गाया है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म सेहरा का यह गीत। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था रामलाल ने। आइए आप सुनते हैं लावारिस फिल्म का गीत, जिसे गाया है मन्ना डे ने, गीत अनजान का और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये गीत आपने सुना, फिल्म थी लावारिस, आवाज़ मन्ना डे की थी। गाइड, आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं। सचिन देव बर्मन ने इसे गाया है, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

फिर सुबह होगी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। आवाज़ मुकेश की थी। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का एक गीत जिसे मुकेश ने गाया है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: सुनहरे गीत पुराने फिल्मों पर के गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रीवा केंद्र से। इस समय 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से किया जाएगा, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: लीजिए सुनिए गुना जिले की चिट्ठी। आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।

0: गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषिरत भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1,382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2,800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये
2: मीडियम पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के रीवा केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की सर में ये भजन।

अभी आप श्री हनुमान अष्टक सुन रहे थे, रचना गोस्वामी तुलसीदास के थे, गायक स्वर हरिओम शरण का। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

उषा सेठ का गाया आप सुन रहे थे ये भजन। रचना मुरली मनोहर स्वरूप की थी। आइए अब सुनते हैं कुछ दोहे। गायक स्वर लक्ष्मी शंकर का है, रचना संत कबीर की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। 10:40 हुए हैं। ईद अजहा के मौके पर खास कार्यक्रम पेश करते हैं। तिलवाते कलाम पाक पेश करेंगे मोहम्मद आदिल हुसैन, और कुर्बानी और हज का फ़लसफ़ा इस विषय पर जानकारी पेश करेंगे मोहम्मद नदीब। तो आइए सुनते हैं ईद उल अजहा पर विशेष कार्यक्रम

दोस्तों आदाब, आप सभी को ईद उल अज़हा का बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के इस खास प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जनाब मोहम्मद आदिल साहब, जो इस प्रोग्राम में कलाम पाक की तिलावत फरमाएंगे। आइए हज के बारे में कुरान पाक के हवाले से कुछ आयतों की तिलावत समाप्त करते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं, आज बातें योग की। अमूमन लोगों का सोचना होता है कि जब हम स्वस्थ हैं तो योग की क्या जरूरत है, ना हमें शारीरिक परेशानी है ना मानसिक, तो ऐसे में योग क्यों करें। यहाँ बता दें, योग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है और आनंद को सुख के ऊपर की स्थिति कहा गया है। तो चलिए आज कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे श्रोता योग के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ समझते हैं वो योग से। नमस्कार।
2: नमस्ते मैम
1: जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, आपका परिचय दीजिए।
2: मैडम, मैं सपना एमपी से बोल रही हूँ।
1: जी जी, आपका नाम बता दीजिए।
2: मैडम, मैं मिसेस टंडन हूँ
1: जी। आज हम जानना चाहेंगे कि योग जो है, योग के विषय में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या कुछ समझती हैं, क्या अनिवार्यता है इसकी अपने जीवन में, ये बताएं।
2: मैडम, योगा करने से देखिए, एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: और साथ में जितने जैसे मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं, योगा करने से वो ठीक रहेगा और शरीर में डिटॉक्स भी हो जाता है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाती है मैम
1: जी। मिसेस टंडन, हम ये जानना चाहते हैं कि योगा जो है नियमित रूप से आप करती हैं?
2: हाँ मैम, मैं नियमित रूप से करती हूँ। अगर यदि कभी छूट जाता है
1: हाँ,
2: तो फिर मैं शाम को कर लेती हूँ। दिन में अगर मैं करती हूँ, अगर छूट जाता तो मैं शाम को करती हूँ। मेरा भी बहुत वेट बढ़ गया था
1: हाँ,
2: तो योगा करने से, और थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करती हूँ मैं
1: हाँ,
2: रोज सुबह मैं जैसे स्प्राउट वगैरह इस तरह के खाना खाती हूँ
1: जी,
2: और घर के भी बच्चे सबको मैं कराना चाहती हूँ योगा।
1: हाँ, तो इससे आपको लाभ हुआ?
2: बहुत लाभ हुआ मैडम, मेरा वेट कम हो गया, मेरे
1: हाँ,
2: को जो स्वेलिंग वगैरह रहती और नसों में दर्द वगैरह होती थी
1: हाँ,
2: उससे बहुत आराम मिलता है मैडम। और जिस दिन अगर छूट जाता है
1: हाँ,
2: तो फिर मेरे को बहुत दर्द होता है मतलब
1: जी।
2: और योगा करना चाहिए, सबके लिए योगा जरूरी है। एक आप 5 मिनट का समय निकाल करिए
1: हाँ,
2: 5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए
1: हाँ,
2: और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए
1: जी,
2: इससे माइंड फ्रेश रहता है
1: जी जी जी
2: और शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी।
2: आप जो है पूरे दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी।
1: चलिए, तो नियमित दिनचर्या में हम योग शामिल करें।
2: हाँ, नियमित दिनचर्या अच्छी रहेगी।
1: जी जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा मिसेस टंडन आपसे बात करके।
2: थैंक यू मैम
1: जी धन्यवाद, आपने फोन किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी।
0: जी, किससे बात कर रहे हैं?
1: मेरे नाम भोली शंकर साहू है, हम नरसिंहपुर जिले से बोल रहे हैं। बढ़िया है मैडम जी।
0: जी, आज बात आपके गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं भोले शंकर साहू जी, योगा करने के क्या फायदे होते हैं?
1: बहुत से फायदे हैं मैडम, शरीर स्वस्थ रहता है,
0: हाँ, और हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी
1: अच्छे
0: अच्छा
1: रहेंगे
0: रहेगा, मन से भी हम प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो क्या
1: जी।
0: योगा आप दिनचर्या में अपनाते हैं?
1: हाँ अपनाते हैं मैडम, अपनाते हैं।
0: तो योगा करने की क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे आप योगा के बारे में लोगों को?
1: हमारे ख्याल से मैडम ये है कि रोज योगा करना चाहिए सुबह शाम। हाँ
0: अच्छा,
1: इतना
0: और यदि वक्त ना मिल पाए
1: निकालना
0: तो?
1: चाहिए मैडम वक्त की अपन योगा कर सकें, हमें
0: जी
1: ज्यादा नहीं कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर सकें रोज
0: जी
1: सुबह शाम करना
0: चलिए,
1: चाहिए।
0: सही बात
1: जी
0: कही आपने भोले शंकर साहू जी, कि हमें
1: जी
0: नियमित योगा करना चाहिए, शरीर के लिए इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भोले शंकर साहू जी, नरसिंहपुर से आपने फ़ोन किया
1: जी
0: जी, बहुत
1: मैडम
0: धन्यवाद आपने फ़ोन किया।

0: जी नमस्कार।
1: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी तो क्या इस गर्मी में भी आप योगा करते हैं?
1: योगा तो नहीं कर पाते हैं,
0: क्यों नहीं?
1: नहीं कर पाते, जल्दी सो गए।
0: आप योगा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या योगा की महत्ता को आप मानते हैं, उसके महत्व को
1: योगा की
0: समझते हैं?
1: महत्ता तो बहुत ज्यादा है, योगा से सब कुछ निरोग रहते हैं सभी लोग।
0: जी तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि योग
1: बिल्कुल
0: करना
1: देना
0: चाहिए?
1: चाहेंगे, योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह से घूमने जाएं। जी
0: तो योगा आप क्यों नहीं कर पाते?
1: मैडम, क्या है हमारा काम इस टाइप का है कि थोड़ा रात में लेट पहुंचते हैं घर पर, तो
0: जी
1: थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, उस वजह से नहीं कर पाते हैं।
0: जब आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं तो योग के लिए भी जरूर वक्त निकालें।
1: फुल निकालेंगे आपके कहने पर, मैं कल से ही शुरू करता हूँ मैडम।
0: जी बिल्कुल। और देखिए योग जो है ये भारत से ही शुरू हुआ था, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल,
0: तो हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ये विधा हमारे पास में है।
1: उसमें
0: भारत
1: शिक्षा के उसमें सब्जेक्ट भी लिया गया है।
0: हाँ, योग तो कहीं कहीं पर अनिवार्य विषय भी है, आज
1: जी
0: भी
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: लेकिन अनिवार्य रूप से इसे हर जगह नहीं अपनाया गया है ना? तो योगा जो है वो हमारे जीवन में एक सेहत की कुंजी है वो।
1: बिल्कुल। बाकी मैं ठंड के दिनों में तो प्रयास करता हूँ करने का,
0: चलिए
1: बाकी अभी तो नहीं कर पा रहा है।

0: हेलो,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम। बताएं कौन बोल रहे हैं आप,
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप
1: दमोह से। जी
0: जी? कैसे हैं किशन जी?
1: ठीक है, गर्मी बहुत है।
0: जी, गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है। किशन जी, हम जानना चाहते हैं, योग यानी होता है जोड़ना या बांधना, है ना? और शरीर और आत्मा को साथ लाने का माध्यम है योग, क्योंकि इससे मन की शांति भी आती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योग के बारे में? योग जीवन में आपके लिए क्या महत्व रखता है? एक मनोभाव से जोड़ करके आप बताएं, या योग को आप जीवन में किस तरीके से देखते हैं?
1: ये बहुत ही कठिन है। चलो, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है तो
0: जी
1: मैं बताना चाहता हूँ कि
0: जी
1: जीवन में तो बहुत सारी ही कठिनाइयाँ रहती हैं। मेरे ख्याल से पग
0: हाँ
1: पग के ऊपर कठिनाई रहती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, कंपटीशन
0: जी
1: रहते हैं।
0: जी
1: लेकिन अपने आप को योग से जोड़ना, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देता हूँ।
0: जी
1: न्यूट्रल,
0: हाँ
1: आप समझे ना, बिल्कुल
0: हाँ हाँ
1: बिल्कुल शून्य मान के छोड़ देता हूँ कि चलो जो होना है वो तो होना ही है, और एक बिल्कुल ही जीरो समझ के, जैसे अपन अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना,
0: हाँ
1: जिधर
0: हाँ
1: जाना चली जाती है, घूमती जाती है,
0: जी
1: लुढ़कती जाती है,
0: जी
1: बस ऐसे अपने आप को छोड़ के शांत मतलब जाना देखता हूँ, तभी
0: हाँ
1: मुझको लगता है कि
0: हाँ
1: मेरे आत्मा जो है बिल्कुल जुड़ रही है
0: हाँ
1: उससे,
0: हाँ
1: और एक विशेष शांति मिलती है। यही है
0: तो
1: मेरा,
0: आप
1: यही
0: जो
1: योग है।
0: ये शून्य पर जब आप पहुंचते हैं, तो उसे
1: जी
0: आप मतलब मेडिटेशन से जोड़ करके किस प्रकार से कहेंगे कि एक मानसिक शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है?
1: एक बहुत ही सुकून मिलता है उस
0: जी
1: समय जब
0: जी
1: हम अपने आप को बिल्कुल
0: जी
1: जीरो जीरो मान लेते हैं ना,
0: हाँ हाँ
1: अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: किसी काम कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सचवाना तो बस ऐसा ऊपर ही ऊपर दिखता रहता है, आकाश आकाश शून्य दिखता रहता है, विशाल दिखता रहता है।
0: हाँ हाँ
1: यही एक अनुभव होता है उस समय जो आप पूछ रहे थे।
0: योग में मेडिटेशन एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जिससे मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना? और आज तो तनाव हर किसी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के व्यवधान जीवन में आ रहे हैं, और उसको हम छोड़कर आगे
1: बिल्कुल,
0: बढ़ें, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: जी
1: ये नहीं कि एक मुझे को, हर एक को, जितने
0: जी
1: भी
0: बिल्कुल
1: लोग हैं, जितने भी संसार में, चाहे
0: जी
1: वो मनुष्य हैं और चाहे वो प्राणी हैं,
0: हाँ
1: हर एक को मतलब पग पग के ऊपर कंपटीशन है, और एक संघर्ष सा है
0: जी
1: जीवन, एक संघर्ष सा रहता है,
0: चलिए
1: लेकिन अपने आप को शून्य कर लेना यही एक सबसे अच्छी बात है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपके इस शून्य पर ले जाने के बाद मेडिटेशन वाली जो बात आपने कही है, उस पर हमारे श्रोता जो हैं वो ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। जी
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: आपने बड़ा अच्छा विषय विषय चुना है,
0: जी जी
1: बहुत ही गंभीर विषय चुना है आपने।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम जी, मैं श्रोता हूँ मैम जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ आपके साथ।
0: जी, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं, आपका परिचय बता दीजिए,
1: जी
0: कहाँ।
1: मैं आपका नीमे श्रोता मैम जी, जय नरसिंह देव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील होटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: आज जो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, उसमें हमने विषय रखा है योग का, तो ये बताइए
1: जी
0: कि योग शरीर की ताकत, फुर्ती और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक होती है,
1: जी
0: तो आपको क्या लगता है योग किस प्रकार से सहायता करता है, इसके बारे में आप बताएं।
1: देखिए मैम, ये योग की बात चल पड़ी है तो मैं सबसे पहले अपनी बात रख दूं कि मैं रोज ही उठ करके जो योग के दो तीन जो होते हैं टिप्स कह सकते हैं, उन्हें अपने माध्यम से उपयोग करता हूँ। उन्हें सांस जोर जोर से लेना, छोड़ना आराम से, और शरीर को जो कह सकते हैं हाथ पैर चलाना, कमर को अपने हिसाब से कैसा रखना है, उसके जो मैम जी जो भी तीन चार चीजें करता हूँ, मैं लगभग 20-25 मिनट के लिए अपने आप को समय देता हूँ।
0: जी
1: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबको करना चाहिए, ये आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे ख्याल से आपके शरीर में होना ही नहीं।
0: चलिए, ये तो रही योग में आप जो आप करते हैं, योग के लिए क्या समझाइश देंगे कि क्या लोगों के पास में समय का टोटा है, कहते हैं हमारे पास में वक्त ही नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप।
1: ये सबके पास बहाना रहता है मैम जी, मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मैं समय निकालता हूँ। किसी के पास किसी प्रकार का समय नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें समय निकालना चाहिए। मोबाइल के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं।
0: हाँ, भाई हम रेडियो के लिए तो जरूर कहेंगे कमलेश जी कि हमारा रेडियो किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालता है ना, आप योगा करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं।
1: नहीं मैम जी, मैंने मान लो एक बात और रखी, खाना खाने
0: जी
1: के लिए समय निकाल
0: जी
1: लेते हैं,
0: जी
1: पानी पीने के लिए समय
0: जी
1: निकाल लेते हैं। हमारे शरीर को यदि चलाना है, आपको स्वस्थ रखना है, तो योग के लिए जरूर बहाना ना बनाएं, समय
0: जी
1: निकालें, के लिए जरूर समर्पण करें।
0: कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हम

0: मैं भोजन या मोबाइल की बात आपने कही है, टीवी की, पढ़ाई की, है ना, अपने मनोरंजन की, हर प्रकार के लिए जब हम वक्त निर्धारित करते हैं तो अपने शरीर के लिए ज़रूर हम वक्त निर्धारित करें और उसको एक नियमित समय पर करें तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो पाता है तो जब कभी भी इस वक्त मिले हमें योगा ज़रूर करना चाहिए,
1: और
0: है
1: मैम
0: ना
1: जी एक बात और रख दूं आखिरी में
0: जी।
1: कि हम अपने

0: ये मेरा प्रश्न आपके अलावा पूरे श्रोताओं से है, तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र या कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र में चले जाते हैं, दो चार दिन गुजारते हैं बढ़िया, वो फ्रेश होकर जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये ऊर्जा यदि आपको कायम रखना है तो ये जरूर कीजिए उस समय निकालिए।
1: चलिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, प्रश्न भी आपका ही था, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपसे बात करके। तो ऊर्जावान रहने के लिए योग जरूर करें।

0: हेलो,
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: सोमत सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं, आज बात आपकी की थी हमारे में, कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यानी पहले से ही यदि आप चेत के रहेंगे तो बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं,
1: हाँ
0: है ना? और इसके लिए योग अगर आप करें तो आप स्वस्थ जीवन जो है लंबे समय तक बिता सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं?
1: बिल्कुल बात सही है। योग निश्चित ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें निश्चित ही निजात मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो
0: हाँ
1: मैंने अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हुए
0: हाँ हाँ
1: और जो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने में भी और ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मुझे आज तक कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं हुई। आप समझिए कि मैं 45 से ऊपर हूँ इस समय, तो
0: हाँ हाँ
1: कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर हम चलें तो निश्चित ही हमें आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं भान होता है पहले से। तो बिल्कुल योग एक ऐसी मैं समझता हूँ व्यवस्था है जो आसानी से हम लोग एक इससे जुड़ जाए तो हमारी जितनी भी फिटनेस की समस्या हो, हमारे शरीर में जो अंदरूनी बातें चीज समस्याएं होती है, जैसे कई लोगों के जो जन्म से समस्याएं होती हैं, कई
0: हाँ
1: लोगों को ठंड सहन नहीं होती,
0: हाँ
1: गर्मी सहन नहीं होती, तो
0: हाँ
1: इस तरह की जब अंदर की समस्याएं होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जूझने में योग का निश्चित ही जो योगदान होता है
0: हाँ
1: वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, योग बहुत जरूरी है। और हमारे संगीत, मैं तो संगीत से जुड़ा हूँ तो योग तो निश्चित ही संगीत के लिए वरदान साबित है। आप जितनी लंबी सांस होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है, तो
0: हाँ
1: निश्चित ही योग करना चाहिए। और ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो इसके शिक्षक हैं जो ज्ञान रखते हैं,
0: हाँ
1: कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हम अपने स्तर से इसको करना शुरू कर देते हैं तो कई बार लापरवाही कह लो या जानकारी कम होने के वजह से कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं सामने।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सोमत सिंह साहब आपने। क्योंकि योग आप करेंगे, यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की उम्र से जुड़ी हुई कोई परेशानी है या फिर आपके जोड़ या किसी भी अन्य प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से आप पूछ लें, है ना?
1: हाँ
0: डॉक्टर की
1: हाँ
0: सलाह जरूर ले लें कि हम योग करेंगे तो क्या ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि उससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है ना?
1: हालांकि एक चीज और भी है, अगर
0: जी
1: हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम योग से जुड़ जाएं तो और इसके फायदे हैं कि और निश्चित ही जो हमारा जीवन है आगे का
0: जी
1: वो स्वस्थ ही रहकर हम आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसके पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही इससे जुड़े तो निश्चित ही इसका लाभ मिलना तय है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात कही सोमत सिंह आपने, और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: जी, किनसे बात हो रही है मेरी?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए, अच्छा।

0: मैम, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ। ठीक
1: कैसी हैं संगीता पटेल जी?
0: है मैम, आप कैसी हैं? हाँ
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी,
0: जी मैम, सही
1: है ना?
0: है।
1: और हमारे
0: हाँ
1: श्रोता जब अच्छे रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बताइए संगीता पटेल जी, अपनी
0: जी
1: नियमित जो दिनचर्या है, आप गृहिणी हैं?
0: जी जी
1: चलिए तो दिनचर्या में आप योग के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं? योगा करती हैं आप?
0: जी मैम, मैं योगा तो नहीं करती हूँ,
1: हाँ हाँ
0: वो अपने जो सुबह के काम हैं वो करती हूँ अपने खुद से। जी
1: खैर काम तो गृहिणी को करना ही होता है, लेकिन योगा जो है एक अच्छा अभ्यास होता है शरीर के लिए। हालांकि
0: जी मैम,
1: गृहिणी जो होती हैं वो घर के जो नियमित कार्य करती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ उनका शरीर जो है लचीला सा हो ही जाता है, पर फिर भी एक नियमित अभ्यास के साथ में यदि हम योग को अपनाएं तो शरीर को जो है वो फायदे होते हैं उससे, है ना? जैसे कि जोड़ में दर्द है या किसी प्रकार से माइग्रेन वगैरह की शिकायत है ना, मानसिक तनाव है, तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए।
0: जी मैम, अभी तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी कर ही नहीं पाती हूँ तो,
1: हाँ हाँ
0: और लेकिन करने की कोशिश करूंगी जरूर।
1: हम यही चाहते
0: जी
1: हैं कि आज कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है,
0: जी
1: और तो
0: जी
1: उसको लोग भाग अपनाएं, है ना?
0: जी
1: केवल बातें नहीं
0: जी
1: करनी है, इसे अपनाना
0: हाँ
1: भी है। तो
0: जी जी
1: आपको क्या लगता है, योग करने से फायदा होगा आपको?
0: मैम, क्यों नहीं होगा, जब सबको होता है हमको क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं।
1: हाँ, और
0: जी
1: ये तो हमारे अपने भारत की विधा है ना?
0: जी मैम, जी
1: तो इसे हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित ही हमें फायदे बहुत मिलेंगे।
0: मैं करने लगी हूँ।

0: मैं ग्राम भावे तहसील नारायणी जिला बांदर से बुद्धि विलास कुशवाहा बात कर रहा हूँ
1: कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहते हैं,
0: जी।
1: योगा जो है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है,
0: जी जी
1: तो योगा करना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे और योग के क्या कुछ फायदे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं।
0: योगा से तो हर चीज निर्भर है, शरीर का हर अंग उससे काम करता है। और योग जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है
1: अच्छा,
0: जी। हाँ
1: तो योगा को आपने अपनाया हुआ है,
0: जी हाँ जी,
1: योग करने से आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं?
0: उससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं।
1: तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे तो मैं श्रोताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे बताएं। इसे शाम को
0: जी
1: भी किया जा सकता
0: हाँ,
1: है ना?
0: और सबसे हाँ सबसे ज्यादा फायदे में अब वो लोग ना करें जिन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां बगैर परामर्श के।
1: बिल्कुल सही, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें
0: हाँ
1: यदि आपको किसी
0: मान
1: प्रकार
0: लो
1: की,
0: जो जिनके लिए अनुकूल है वही।
1: जिनके लिए अनुकूल है वही हैं करें, और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है या बीमारी है तो आप डॉक्टर से
0: हाँ
1: परामर्श लेकर के
0: तो
1: करें।
0: हाँ फायदे की जगह नुकसान हो मालूम, हम लगातार कर रहे हैं तो कहाँ से फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने कुशवाहा जी,
0: जी
1: बहुत धन्यवाद आपने बात की
0: जी नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, योग मानसिक विकार दूर करता है, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना योग को अपने जीवन की समय सारणी में स्थान दें। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि योग जरूर अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास में किसी प्रकार की परेशानी है शारीरिक, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श जरूर लें। योग अपनाएं ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने बात की योग पर। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायालय ने कहा कि ट्रिशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु से पहले के थे। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय पीड़िता के परिवार के आरोपों को नज़रअंदाज किया गया। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5,000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म याराना से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म थी शान। इस गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरू की और इसे संगीत में बनाया था आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया था गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शुएब, पोत्रा, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद भाई ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप सभी ने सिंगपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आशा से, स्वर लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, आप सभी की पसंद पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: करता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का।
1: मीडिया मेपर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है।
0: अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।
1: आइए सुने देशगान।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 12:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे
1: अरे आप
2: फाता फाता ये ले दवा, हकीम जी से लाया हूं, खा ले, आराम आ जाएगा।
1: अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बचूंगी शायद।
2: अरे ऐसा क्यों कहती हो, हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: आराम कहाँ से होगा, काम कौन करेगा?
2: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
1: मैं ना परेशान हूं तो कौन होगा, और घर में है ही कौन? तुम तो काम पर चले जाते हो दिन भर, घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
2: फाता, घर तो संभालने से ही संभलता है, तुम ठीक हो जाओ, समय पर दवा ले लेना, जिससे दवा का असर जल्द हो।
1: तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी?
2: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे?
1: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
2: अरे बेगम, सारे अपने घर में खुश है, फिर उसे क्यों तकलीफ दें? और फिर बेटी अपने घर में रहे, ये कौन सी अच्छी बात है?
1: बात अच्छे बुरे की नहीं है, समय की है। घर में दो दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो।
2: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
1: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
2: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
1: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
2: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
1: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
2: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।

0: एक बात कहूं?
1: हाँ कहो, क्या बात है?
0: सारे को बुला लेते, आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
1: बाजार जा ही रहा हूं, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
0: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
1: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
0: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
1: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
0: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
1: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
0: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
1: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
0: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
1: अच्छा, मैं जाता हूं बाजार।

0: अरे करीम भाई, चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ बताएंगे भी, आखिर बात क्या है?
0: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से।
1: हा?
0: बुखार उतर ही नहीं रहा।
1: अरे अरे, ओ तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
0: दवा लाकर दी है।
1: हा?
0: हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
1: अरे भाई, मौसम का भी असर होता है भाई, अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
0: करीम भाई, फाता की इच्छा है
1: क्या
0: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
1: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
0: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: ओहो, कैसी बात कर रहे हैं हसन भाई। अरे भाई, सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
0: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
1: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहाँ जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा तो अब मैं चलूंगा, आपको भी देर हो रही होगी और फाता अकेली होगी।
0: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। भाई 2 कप चाय देना।
1: हाँ भाई हसन भाई, तो अब काम कैसा चल रहा है अभी?
0: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
1: अरे अरे, ऐसी क्या बात है? और भाई कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
0: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
1: आप भी।
0: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
1: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ अब सरकार भी पहल कर रही है, देखना कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ
0: आमीन।
1: अच्छा भाई, तो हसन भाई अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
0: अच्छा, सारे को भेजना ना भूलिएगा।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, भूलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ
0: अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: सारे।
1: अरे आ गए आप?
0: हाँ।
1: मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुंह हाथ धो लूं।
1: चाय के साथ रोटी ला दूं?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है।
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो, पर यह अच्छा तरीका तो जरूर है। और आज इसी की कीमत है, जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे, तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूं।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे।
0: अच्छा,
1: लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन, मुश्ताक? आ गए काम से?
0: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
2: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है?
0: अब्बू, अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
2: और वो सारे कहाँ हैं?
0: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
2: बनी हो तो दे दो।
0: सारे, अब्बू के लिए चाय लेती आना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
2: हाँ, काम से कब लौटे बेटा?
0: बस अब्बू, अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
2: काम तो हो गया। और हाँ, वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे।
0: अच्छा।
2: हाँ, सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई, हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
0: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसे भी क्या बात है अभी?
2: अरे अरे,

0: तक भाई वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, दो दिनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाए रखी है।
1: अब इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
2: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
0: अरे बेगम, वो हसन मियाँ मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
2: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
0: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहां जाने का।
2: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहां से? अरे लोग क्या कहेंगे, सारे है कहाँ?
1: अम्मी वो रसोई में है।
2: जा सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहां।
1: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
0: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
2: हाँ सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
1: जी। सारे, सारे,
3: जी
1: जरा इधर आना।
3: आई जी, कहिए।
1: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
3: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
1: घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने जरूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
3: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
1: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
3: तो अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
1: हाँ, बात हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए तो ठीक होगा।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
1: अब मेरे कपड़े रहने दो,
3: क्यों,
1: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
3: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
1: नहीं, काम बहुत है, वैसे वहां जाने पर देखा जाएगा।
3: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: देख तो कौन आया है।
1: अम्मी अम्मी
2: कौन? सारे आ बेटी बैठ मेरे पास।
1: कैसी हो अम्मी?
2: जिंदा हूँ बस। 2 दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है। अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
1: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी? तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
2: यकीन नहीं होता।
1: यकीन करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी। मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
2: मुश्ताक भी आया है क्या?
1: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
2: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना? कुछ बना ले, ऐसा कर उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
1: अम्मी मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहें, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है। काम में जाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
2: अच्छा, मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
1: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
2: बेटी मैं के आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूँ जो बेटी के पहले मैं के वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूँ।
1: अम्मी ऐसा क्यों सोच

0: करती हो। क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहां कुछ काम ना करूं?
1: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती। तू तो वहां भी दिन रात काम करती रहती होगी। यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है। ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
0: अम्मी, तू भी क्या कहती है? पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
1: मुश्ताक मानेगा क्या?
0: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
1: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
0: हाँ, अभी देती हूँ।
1: अब तो एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
0: अम्मी, लो पानी।
1: दे बेटी।
0: अम्मी, तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
1: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है। ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
0: ये क्या कह रही हो अम्मी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
1: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
0: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
1: सारे
0: हाँ अम्मी, कहो।
1: बेटी तो खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
0: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी? मैं खुश हूं।
1: नहीं, वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
0: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
1: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो। तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है। कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे। और तू?
0: अम्मी, तू भी कैसी बातें करती है? वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
1: तू तो कुछ समझती ही नहीं। वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
0: अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
1: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं। और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
0: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।
1: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है। और तू उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रही है।
0: अम्मी, ऐसा ना कहा करो। अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा, मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
1: अरे बिटिया, सारे तुम जो भी कहो पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह।
0: अम्मी,
1: मुश्ताक कमाता है पर आज तक तुम्हें क्या

0: दिया, काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे। पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहां होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी, मुश्ताक मुझसे प्यार करता है, तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूं?
0: अरे जाने दे, सारे हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है। और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता, तो वह तुम्हें उस नरक से बाहर कहीं और घर लेकर रखता जहां तुम रानी की तरह रहती। सारे मेरी बात मान, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुश्ताक को कहो कि वो अलग मकान लेकर रहे या यहीं आ जाए, यहां घर की कमी तो नहीं?
1: नहीं अम्मी, मैं मुश्ताक के साथ ठीक हूँ, खुश हूँ। और अलग मकान लेकर रहने की क्या बात हुई भला? यहाँ आकर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। और मुश्ताक को भी ये
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिंसकियां की दूसरी कड़ी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय सत्र न्यायालय ने पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया। ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु के पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 अथवा नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव 29 मई तक भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। हर गौशाला में कम से कम 5000 गौवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गायें होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से है।

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश का इतिहास बहुत समृद्धशाली और गौरवपूर्ण रहा है, जिसमें अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाए तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे अनेक आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं जिनकी चर्चा हमें आज भी रोमांचित कर देती है। ऐसे ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे वीर सावरकर, जिनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, कवि, ओजस्वी वक्ता थे। उनके वीरतापूर्ण कृत्यों की वजह से ही उन्हें उनके समर्थकों द्वारा वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 में ब्रिटिश भारत के बंबई प्रेसिडेंसी में नासिक जिले के भागपुर गांव में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता और 16 वर्ष के हुए तो उनकी पिता का देहांत हो गया। दुख और कठिनाई के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और युवावस्था के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए। बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, जहां वे पढ़ाई भी करते थे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे, जिसमें उन्होंने प्रमाण सहित यह सिद्ध किया कि 1857 का संग्राम गदर नहीं बल्कि भारत की आज़ादी का प्रथम संग्राम था। इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के दौरान वहीं लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। उनके क्रांतिकारी कृत्यों के कारण उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें जहाज के रास्ते भारत लाया जा रहा था तो वे सीवर होल के रास्ते भाग निकले। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और काला पानी की सजा मिलने पर सेलुलर जेल भेजा गया। यहाँ भी उनका आक्रोश उनकी कविताओं और लेख में स्पष्ट दिखाई देता रहा। सखियों, वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था और 10 वर्ष के बाद वे जेल से रिहा हुए। उन्होंने जाति भेद, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधारक के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आया। देश प्रेम और भक्ति की भावना उनके द्वारा मराठी भाषा में लिखे साहित्य के 10,000 पन्नों में और अंग्रेजी भाषा के 1500 से अधिक लिखे पन्नों में स्पष्ट दिखाई देती है। सखियों, आपने एक पुरानी फिल्म काला पानी का नाम तो सुना ही होगा। वह फिल्म वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर ही बनी थी। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर के नाम पर ही रखा गया है। आज भी सावरकर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। आजाद भारत में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर कार्य करते रहे। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन पूरा हो जाए और वह समाज के लिए और योगदान ना दे सके तो उसे अपनी शर्तों पर जीवन त्याग देना चाहिए। इसे उन्होंने आत्मार्पण का नाम दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1 फरवरी 1966 से उपवास शुरू कर दिया। 26 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण धीरे धीरे उनका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया और 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया।

0: ए आर रहमान की आवाज़ में हमने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था स्वदेश। ऐसा कहा जाता है सखियों कि अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। बात भी सही है, पड़ोस अच्छा हो तो जीवन की आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो क्यों ना पड़ोसी से सद्व्यवहार बना कर रखा जाए। आइए इसी बात पर सुनते हैं विधि गौतम से यह वार्ता। विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें।
1: नमस्कार, आज की वार्ता का विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें। आज के समय में एकल परिवार बहुतायत से मिलता है, किंतु कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उस समय पड़ोसियों की परिभाषा भिन्न हुआ करती थी। इस संबंध में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। आज से लगभग 4 दशक पूर्व जनसंख्या का आंकड़ा इतना विस्फोटक नहीं हुआ था तथा संयुक्त परिवारों का चलन थोड़ा बहुत बाकी था। उस समय के लोगों के पास जमीन जायदाद के रूप में बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। अधिकांशतः बड़े संयुक्त परिवारों के विभाजन में इन्हीं बड़े बड़े मकानों के बंटवारे हुआ करते थे और पड़ोसी के रूप में प्रायः पारिवारिक लोग और रिश्तेदार ही हुआ करते थे। उस समय के लोगों के पड़ोसी धर्म के रूप में पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाएं जुड़ी रहती थी। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ सामाजिक मान्यताएं तथा परंपराएं भी बदलने लगी। स्थानीय उद्योग व्यापार तथा खेती किसानी के सीमित साधनों के चलते लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी अथवा व्यवसाय हेतु अन्यंत्र जाने लगे और किराए के आवास में रहने के कारण ऐसे लोगों के पड़ोस बदले, पड़ोसी बदले और उनके पड़ोसी धर्म में भी बदलाव आया। यही बदलता पड़ोसी धर्म सांस्कृतिक बदलाव का कारक भी बना। बढ़ती जनसंख्या ने ही छोटे बड़े शहरों में आवासीय समस्या के समाधान की दिशा में अपार्टमेंट कल्चर को जन्म दिया। इस बदले अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोस और पड़ोसी धर्म की धारणाएं तथा मर्यादाएं भी बदल गईं। इस अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोसियों से सद्व्यवहार जीवन को खुशनुमा और दुर्व्यवहार जिंदगी को खौफजदा बना देता है। अपार्टमेंट कल्चर में साफ सफाई, पानी तथा सुरक्षा हेतु चौकीदार आदि की व्यवस्थाएं सामूहिक रहती हैं। इसीलिए अपार्टमेंट के रहवासियों को चाहिए कि वे उदार मना सहयोगी और सहिष्णुता से पड़ोसियों से आपसी तालमेल बनाकर रहें, क्योंकि हर सुख दुख एवं विपत्ति के समय आपके दरवाजे पर पड़ोसी ही सबसे पहले खड़ा होने वाला रहता है। ऐसे समय आपका सद्व्यवहार ही काम आता है। सामान्यतः पड़ोस में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई नौकरी पेशा तो कोई व्यापारी अथवा उद्यमी। सभी की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग होते हैं, जिनके स्वभाव में भिन्नता भी रहती है। इन सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार का स्वरूप भी कमोवेश बदल ही जाता है। जहां बच्चे पड़ोसियों से प्यार भरा व्यवहार चाहते हैं, तो बड़े और बुजुर्ग आदर भाव और सम्मान भरा व्यवहार चाहते हैं। यह कहावत भी सही है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा।

0: कहने का तात्पर्य, जैसा व्यवहार आपका दूसरे लोगों से होगा वैसा ही व्यवहार आप उनसे पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, सद्व्यवहार क्या होता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है, जो सभी वर्ग और समुदाय पर लागू हो। सभी से संतुलित तथा मीठे बोल बोलना, किसी के भी प्रति विद्वेष अथवा नीचा दिखाने की भावना का न होना, पड़ोसियों के प्रति उचित सहयोग के लिए तत्पर रहना, किसी को भी अनुचित तथा अवैध एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से दूरी बनाए रखना, ये सभी सद्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। आपका पड़ोसी आपका मित्र भी हो सकता है या फिर संबंधी, यदि नहीं तो मित्रवत अथवा संबंधी सदृश संबंध बनाए जा सकते हैं, जो कि औपचारिक संबंधों से ऊपर उठकर होते हैं, जिनमें गहराई रहती है। ऐसे संबंध उत्कृष्ट सद्व्यवहार की कोटि के माने जाते हैं। इस तरह के संबंधों में जरा सी चूक विग्रह का कारण बन सकती है, इस बात को सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। छोटी छोटी सी भूल चूक की नजरअंदाज करने में कोई कटुता की गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह की बातें भी सद्व्यवहार की ही परिधि में आते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके सहकर्मी जो आपके अगल बगल या आमने सामने बैठकर कार्य करते हैं, वे भी एक तरह से पड़ोसी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में आपका 8 से 10 घंटे का समय बीतता है। इसीलिए उनसे भी सद्व्यवहार करना आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ सद्व्यवहार आपके कार्यस्थल के वातावरण को शांतिमय बनाता है। सहकर्मियों के बीच में सद्व्यवहार बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल की वांछनीय गोपनीयता बनाए रखना, एक दूसरे सहकर्मी की शिकायत या चापलूसी करने से बचना, दूसरे के कामों में अनावश्यक दखल न देना, ये सभी बातें सहकर्मियों से सद्व्यवहार बनाए रखने में मददगार होती हैं और स्वयं तनाव मुक्त रह सकते हैं तथा अपना कार्य निष्पादन निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब बात आती है जब पड़ोसी पारिवारिक या रिश्तेदार हो। ऐसे पड़ोसियों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं और संबंध भी संवेदनशील रहते हैं। ऐसे पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है और उलझन भरे मामलों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई रहती है। किंतु रिश्तेदारी वाले पड़ोसियों से मान सम्मान वाले बर्ताव का निर्वहन भी जरूरी है। अब बात आती है जब पड़ोसी किसी और धर्म के अनुयायी हो। ऐसे पड़ोसियों से संबंध बेहतर रहे और उसके लिए चाहिए कि आप स्वयं अपने धर्म के आडंबर और हठधर्मिता को स्थान न दें और पर धर्म अर्थात पड़ोसी के धर्म का सम्मान करें, साथ ही उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पूरी करने दें और उनके धार्मिक उत्सवों पर अपनी शुभकामनाएं अवश्य दें, जिससे पड़ोसियों से धार्मिक सद्भाव सदा बना रहे। पड़ोसियों से कभी कभार पैसों का लेन देन भी करना पड़ता है, यह एक संवेदनशील मामला है। इसीलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा पड़ोसी कैसा है, पैसों के लेन देन के मामले में पाक साफ है या नहीं। ऐसा पूरी तरह सोच विचार कर ही इस तरह के लेन देन को एक सीमा तक ही करना चाहिए। वैसे भी अपने आसपास के पड़ोसियों की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए कि आपका पड़ोसी कैसा है। यह जानकारी आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको इस बात की भनक नहीं लगना चाहिए कि आप उनके संबंध में पूरी जानकारी ले रहे हैं। पड़ोसी के विषय में जानकारी रहने पर आपको उससे कैसा बर्ताव करना है, इसमें मदद मिलेगी। आपके पड़ोसी सभी तरह के हो सकते हैं, किंतु सद्व्यवहार एक सामान्य सी भाषा है जिसमें संतुलित एवं मीठे बोल सम्मान की भाषा के साथ बोले जाएं। यदि आपने यह मूल मंत्र अपने जेहन में उतार लिया है, तो पड़ोसी आपके सद्व्यवहार के कायल तो रहेंगे ही, आप उनसे भी उचित सम्मान और सद्व्यवहार पाएंगे। धन्यवाद।
1: पड़ोसी से सद्व्यवहार।

आभार बनाए रखें। इस विषय पर हमने सुनी विधि गौतम से यह वार्ता। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में टशन फिल्म का ये गीत।

0: उम्मीद करते हैं सखियों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रुबीना को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता। भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे रेवाराम मेहरा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लोक भजन से।

रेवा राम मेहरा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये बारामासी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट था। आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे जबलपुर केंद्र के योगदान से सुनुति महेश्वरी के स्वर में भजन। सबसे पहले सुनते हैं देशगान।

0: सुनीति महेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान फिल्म की ये गज़ल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी

0: और बेहतर होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं कह, देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, दो दिन का यह कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले तीन दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
4: बच्चों

0: ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श

0: और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइश को पूरी करने का वक्त आ गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। आप है दिल्ली से हमारे श्रोता कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये हमें फरमाइश मिली है ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी, शिवांश और समस्त नेवा परिवार की। और साथ ही साथ इस गीत की पसंद में हम शामिल कर रहे हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का ये पत्र। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृत फिल्म से मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता है अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश सुखी और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली श्वेता, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। साथ ही साथ इसकी फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से।

आज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा और इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू ने।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमें फरमाइश मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और ध्वनि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है धमनी छत्तीसगढ़ से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। साथ ही साथ ये खत हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजदाबा खान और राउफ भाई, शाहिद भाई। इन सभी की पसंद पर प्यासा सावन फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौद गल्यायन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एफआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडिया व्यू पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और रात 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम और 7:21 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन। राग होगा गोरख कल्याण। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:30 सुबह हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, आपका स्वागत है और कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे रेवा राम।